0: चढ़ावे।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साथो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी मकड़ी के उस जाले को देखा है जो हवा में तैरते हुए बिल्कुल अदृश्य सा लगता है? जब तक उस पर धूप की कोई किरण या ओस की कोई बूंद पड़े, तब तक उड़ते हुए छोटे छोटे पतंगों को वह दिखाई ही नहीं देता। पतंगे सोचते हैं कि सामने खुला और साफ आकाश है, वे पूरी आज़ादी से उस तरफ उड़ते हैं और एक ही पल में उस अदृश्य रेशमी धागे में ऐसे उलझ जाते हैं कि जितना फड़फड़ाते हैं उतना ही कसते चले जाते हैं। कोने में बैठी मकड़ी को कोई शोर मचाने की जरूरत नहीं होती, वह चुपचाप सही वक्त का इंतज़ार करती हैं। हमारे जीवन और हमारी चेतना के साथ भी बिल्कुल यही खेल चल रहा है। हम सोचते हैं कि माया केवल बाहर के धन, मकान या ज़मीनी जायदाद में है, लेकिन माया का सबसे खतरनाक जाल हमारी सोच, हमारी रुतियों और हमारी सूक्ष्म चेतना के भीतर बिछा हुआ है। कबीर साहब आज हमें उसी अदृश्य जाल और काल के गुप्त वार से सावधान कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह सूत्र। कबीर सुषमी सूरति का जीव न जाने जाल, कबीर सुषमी सूरति का जीव न जाने जाल, कहे कबीरा दूरी कुरी आत्म अदिष्ट काल। कबीर सुषमी सूरति का जीव न जाने जाल, कबीर सुष

आत्म आदिष्ट काल रे साथो, आत्म आदिष्ट काल। श्रोताओं, कबीर साहब माया की आंतरिक सूक्ष्मता को उजागर करते हैं। कबीर सुषमी सूरती का यह जो माया और मन का प्रपंच है, यह केवल बाहर की स्थूल दुनिया तक सीमित नहीं है। यह सूक्ष्मी सूरती यानी हमारी चेतना, हमारी आंतरिक वृत्तियों और हमारे विचारों के अत्यंत बारीक स्तरों में रेशे रेशे की तरह समाया हुआ है। जीव न जाने जाल, और इस संसार का अज्ञानी जीव बाहर की लड़ाइयों में इतना उलझा रहता है कि वह अपने ही भीतर फैले इस सूक्ष्म जाल यानी मोह, सूक्ष्म वासनाओं और अहंकार के फंदे को पहचान ही नहीं पाता। उसे लगता है कि पूरी तरह स्वतंत्र और सुरक्षित है। इस धोखे की अंतिम परिणति को अगली पंक्ति में चेतावनी के रूप में कबीर कहते हैं, कहे कबीरा दूरी कुरी। कबीर पुकार कर कहते हैं कि इस अज्ञान के कारण यह आत्म यानी जीवात्मा अपने निज घर और परमात्मा से दूरी कुरी यानी बहुत दूर भटकाव के कोने में जा पड़ी है। आत्म अधिष्ट काल और दूसरी तरफ अधिष्ट काल यानी वह सर्वक्रासिक काल, अंतहीन समय चक्र हर दिशा से गुप्त रूप से बिना कोई आहार दिए इस आत्मा पर घात लगाए बैठा है। जब तक जीव अपने सूक्ष्म बंधनों को समझता है, तब तक काल उसे अपने गालों में समा लेता है। यह दोहा अविद्या के आवरण और काल पाश का महाविश्लेषण है। वेदांत में माया की दो शक्तियां मानी गई हैं, विक्षेप और आवरण। स्थूल विकारों से बचना फिर भी आसान है, लेकिन सूक्ष्म वासनाएं, जैसे कि बहुत धार्मिक हूँ, मैं ज्ञानी हूँ या पारलोक के सुखों की सूक्ष्म इच्छा, साधक को बहुत बारीक स्तर पर बांध लेती हैं। आदिष्ट काल का दार्शनिक अर्थ है कि प्रकृति का काल नियम किसी को नहीं बख्शता। कबीर समझा रहे हैं कि जब तक साधक अपनी सूरती को इस सूक्ष्म जालों से छुड़ाकर केवल विशुद्ध साक्षी भाव में स्थिर नहीं करता, तब तक काल के चक्रव्यूह से पूर्ण मुक्ति संभव नहीं है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा रुक कर अपने ही विचारों के बारीक परतों को देखिए। हम बाहर से तो बहुत शांत, सज्जन और धार्मिक दिखते हैं, लेकिन क्या हमारे भीतर दूसरों की आलोचना, सूक्ष्म ईर्ष्या, मान सम्मान की भूख या अपनी अच्छाइयों का कोई छिपा हुआ घमंड काम नहीं कर रहा है? यही वह सूक्ष्मी जाल है जो हमारे भीतर ही भीतर बांधे रखता है और हमें पता भी नहीं चलता। आज कोशिश कीजिए अपने भीतर की इस सूक्ष्म पकड़ को ढीला करने की। अपनी चेतना के हर कोने को सद्गुरु के विवेक और उस राम नाम के प्रकाश से साफ कीजिए। जब आप अपनी आत्मा को इन बारीक जालों से मुक्त करके विशुद्ध सत्य में टिका देंगे, तो काल का कोई भी भय आपको छू नहीं पाएगा और आप सहज ही उस परम अभय पद को प्राप्त कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साथो, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जीवन को एक नए नजरिए से देखा, बहुत सारी बातें फिर सामने आई हैं कि किस तरह के मेरे थॉट्स होते हैं, और जब थॉट्स को मैं सही रास्ते पर लेकर आती हूँ तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, ना सिर्फ मन के इमोशंस के बल्कि शरीर के भी, जो ओपन हो जाते हैं। आगे कुछ और बातें हैं जो इस कड़ी में जानते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, बात हमने कर ली आज माइंड की भी, बात हमने करी बॉडी की, और आई थिंक इस प्लेटफॉर्म पर इस श्रृंखला में पहली बार हमने बात की थी कि किस तरह से जो माइंड का पूरा प्रभाव है, थॉट्स का प्रभाव मेरे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पर कैसे पड़ रहा था। ब्लॉकेजेस को ओपन करने की भी बात की। बहुत बार ये कहा जाता है कि माइंड बॉडी का जो बैलेंस है उसमें स्लीप या जो हमारी नींद है उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, और आज इसी प्लेटफॉर्म पर या कई बार प्रोग्राम्स में बात ये होती है कि हम या हमारे बच्चे, हमारे परिवार वाले सबसे ज्यादा स्लीप डिप्राइव्ड है। तो क्या नींद का जो है वो बहुत असर है हमारे जीवन में?
1: बिल्कुल, बहुत ही डीप असर है, क्योंकि एक तो हम ये समझे कि नींद की जरूरत क्यों है। इस सारा दिन जो भी हम कार्य करते हैं, भले आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे शरीर में भी परिवर्तन आते हैं। एक केमिकल डेवलप होता है जिसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बढ़ता जाता है सारे दिन में, फिर अब उसे कम करने की आवश्यकता है। अगर वो कम नहीं हुआ तो आपको थकावट होगी, चिड़चिड़ापन होगा, टॉलरेंस कम हो जाएगा। तो स्लीप एक बहुत ही पावरफुल माध्यम है कि जिससे लैक्टिक एसिड का लेवल जो है वो कम हो जाता है।
0: तो ये प्रोड्यूस क्या क्यों होता है?
1: लैक्टिक एसिड तो इसलिए प्रोड्यूस, सारा दिन जब हम कार्य करते हैं तब कहीं ना कहीं छोटी मोटी स्ट्रेस भी होती है, और कोई चीज है आपकी इच्छा के अनुसार नहीं भी हो रही है, जब इन सभी परिस्थितियों में ब्लड वेसल्स थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो इससे जो जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतना ऑक्सीजन मसल्स को नहीं मिलता है, और जो मेटाबॉलिज्म हो रही है उसमें ऑक्सीजन की कमी आती है। अगर पूरी मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाए तो लैक्टिक एसिड निर्माण नहीं होता है, एनर्जी निर्माण होती है, लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और जैसे जैसे लैक्टिक एसिड बढ़ता जाएगा तो वह सिम्टम्स निर्माण होंगे, और उसे कम करने की जरूरत है। दूसरी बात कि भी सारे दिन में ऐसी कई चीजें होती है कि जो आपको अच्छी नहीं लगती है, जिसको रिजॉल्व करने की भी जरूरत है, और हम जागृत रूप से उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो जब आप सोते हैं तब स्वप्न आते हैं, भले कई लोग स्वीकार न भी करें परंतु स्वप्न आते हैं जरूर, वह स्वप्न में भी आपकी जो दिन की बातें वो रिजॉल्व होती है और आप फिर फ्रेशनेस का सवेरे अनुभव करते हो।
0: अच्छा, तो कई बार तो वो स्वप्न जो है वो ऐसा नहीं फील हमें करवाते, कई बार तो सपने याद नहीं रहते, और कई बार सपने जो हैं वो बड़ा हमें डरा देते हैं, थका देते हैं ज्यादा, तो फिर हम तो फ्रेश नहीं महसूस
1: करते। वो तो कुछ नहीं, कुछ सिर्फ एंजाइटी जो ड्रीम्स है ना, जिसमें डरावनापन है, वो सही है कि वो आपको थका भी सकते हैं, परंतु और जो अधिकतर स्वप्न है उसमें आपके मन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होते हैं, और स्वप्न में आप चीज जैसी है वैसी नहीं देखते हैं कि मैं आपके साथ नाराज हूं, तो वह बात स्वप्न में नहीं आएगी और कोई सिंबल्स के रूप में आएगी, और हो सकता है कि वह नाराजगी वह रिजॉल्व हो जाए।
0: अच्छा, वही सपने में रिजॉल्व हो जाए,
1: स्वप्न में भी रिजॉल्व हो जाए, कहीं सिंबल्स भी आएंगे, सिर्फ नाराजगी नहीं, मेरी कहीं इच्छाएं भी है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो पा रहा हूं, तो भी मेरे अंदर वो सप्रेशन है, अंदर में फीलिंग है, लेकिन स्वप्न में कुछ आएगा
0: तो
1: ऐसे सिंबल्स आएंगे या मैं उड़ रहा हूं ऐसी कोई बात आएगी, और उससे जो इंटरनल सबकॉन्शियसली वो जो डिजायर है वो डिजायर रिजॉल्व हो जाएगा।
0: अच्छा, उसके कारण जो ब्लॉकेज हो रहा होगा। सिस्टर शिवानी, अगर स्लीप इतनी इंपॉर्टेंट है, यू नो, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और वो उसको कम करना जरूरी है, दूसरा इतनी सारी चीजें रिजॉल्व हो रही हैं, हम रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं आजकल? वी जस्ट डोंट वांट टू स्लीप। आई मेट अ चाइल्ड, वो 13-14 साल की, एंड शी सेज कि मैं सोना ही नहीं चाहती, सोना मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है।
2: सो यू हैव गिवन द आंसर कि उनको लगता है कि सोना वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि वो इतना कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए वो सो कर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। बट ये भी तो लैक ऑफ नॉलेज है, ये भी तो लैक ऑफ अवेयरनेस है कि मैं जिसने वो अचीव करना, इवन इफ इट्स एन अचीवमेंट, अगर मैं हेल्दी नहीं मेंटली भी फिजिकली भी आई विल नेवर बी एबल टू अचीव. हम सिर्फ उस टाइम को देख रहे हैं कि ना सोकर हम इतना समय बचा लेंगे, लॉन्ग टर्म उसका जो डैमेज हो रहा है वी आर नॉट लुकिंग एट इट. दिस इज टोटली इग्नोरेंस ऑफ द सन. एक्चुअली ये सारी चीजें जो आज हम कर रहे हैं इग्नोरेंट है हम टोटली अपने ही वेलबींग के बारे में.
0: वेरी ट्रू. इनफैक्ट नींद आती ही नहीं है.
1: मूल कारण को एक तो समझे. मूल कारण तो है हमारी चिंताएं, एंग्जाइटी, अंदर का टेंशन. नींद क्या है? वास्तव में नेचुरल प्रोसेस है. जो हाइपोथैलेमस की बात कही थी ना, हाइपोथैलेमस में बस वही स्विचेस है, स्लीप सेंटर जिसको कहते हैं. अगर वो स्लीप सेंटर एक्टिवेट हो जाए तो आपको इमीडिएटली नींद आने लगेगी. परंतु सारे दिन के टेंशन, एंग्जाइटी और चीजों को लेकर के आप वो स्लीप सेंटर्स को एक्टिवेट ही नहीं होना देते हैं, क्योंकि डिटैच नहीं होते. जब डिटैच होते हैं तो ऑटोमेटिकली स्लीप सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं.
0: वो कोई फिर बटन है उसका?
1: हाँ, बटन है वास्तव में, और वो नेचुरल है. वैसा कोई नहीं है कि उस इलेक्ट्रोड, सचमुच इलेक्ट्रोड प्रेस करो, उसको स्टिमुलेट करो तो नींद आने लगी. परंतु ऐसा तो नहीं कर सकते, नेचुरल प्रोसेस में होना चाहिए.
2: हम सब ने जीवन में कोई ना कोई एक रात ऐसी एक्सपीरियंस की होगी जब नींद नहीं आ रही थी. नॉट नेसेसरी कि पूरी रात नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अगर मेरा रोज का टाइम 10 है, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, नींद नहीं आ रही थी, एंड वो कोई ना कोई ऐसा दिन था व्हेन देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन इन माय माइंड. कुछ हुआ है, कोई बात हुई है, एंड वो चल रहा है मेरे माइंड में. इसका मतलब कि अगर मन में थॉट्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं, बहुत फास्ट स्पीड पे चल रहे हैं, आप लेटे भी हुए हैं, आपका माइंड ऑफ नहीं हो रहा, मतलब मन की जो सोचने की गति है वो धीरे नहीं हो रही है. बेसिकली यही है कि मेरी गाड़ी फर्स्ट गियर में चल रही है, वो स्टॉप पे आ ही नहीं रही, न्यूट्रल में जा ही नहीं रही है. कि अब क्या हुआ, ये हमें कभी कभी हुआ करता था, जिस दिन कोई चिंता थी, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई थी. अब चिंताओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, हमारे सामने आने वाले चैलेंजेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, चिंताओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है. तो कई दिन ऐसे हम एक्सपीरियंस करते हैं कि नींद नहीं आ रही है. रीजन, सारा दिन थॉट्स बहुत फास्ट चल रहे थे, शाम को घर आए, क्या किया, टीवी देखा, कोई फिक्शन नॉवल पढ़ा, न्यूज़ देखी, कोई सीरियल देखा, कभी तो हॉरर शो है, कभी वायलेंट है. थॉट्स को स्लो डाउन करने के बजाय और फास्ट फास्ट फास्ट फास्ट फिर अपने पर्टिकुलर टाइम पर जाकर लेट गए और सोचा लेटे तो नींद आ जाएगी, कैसे आएगी. माइंड को स्लो डाउन ही नहीं कर पा रहे. देन वी से कि आई वांट टू स्लीप बट आई एम नॉट बीइंग एबल टू फॉल ऑफ टू स्लीप बिकॉज आई डोंट नो द आर्ट ऑफ स्लोइंग डाउन माय माइंड. जितना हम इस पर ध्यान दिन में रखते हैं फिर रात को वो बहुत ईजी हो जाता है. अगर हम अपने माइंड के थॉट्स पर सारा दिन ध्यान रखें, ये स्ट्रेस, ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं, इसको स्लो डाउन करते जाएं, बीच बीच में पॉज करें, वो जो हर एक घंटे के बाद एक मिनट करें, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी. अगर आप रात को सोने से पहले थोड़ी देर मेडिटेशन करें, बहुत सारे भाई बहने हैं सेंटर पर आते हैं, कहेंगे नींद नहीं आती, हमें बिल्कुल नींद नहीं आती. अब आप उनको सबके साथ मेडिटेशन के लिए बिठाइए या अकेले भी मेडिटेशन के लिए बिठाइए, जैसे ही मेडिटेशन कमेंट्री शुरू होगी
0: आपको नींद आती,
2: आपको नींद
0: आती. आई नो, दिस हैपेंड विद मी आल्सो, यू नो,
2: व्हिच इज अ साइन कि ये काफी समय से अच्छी तरह से सो नहीं रहे हैं. अब बहुत कहेंगे कि घर पे नहीं नींद आती, सेंटर पर आकर तो नींद आ जाती है, क्योंकि जैसे ही किसी ने आपको वो मेडिटेशन कमेंट्री दी, वातावरण क्रिएट किया, सूदिंग म्यूजिक था, आपके माइंड स्लो डाउन होने लगा. क्योंकि मैं स्लीप डिप्राइव्ड हूँ, जैसे ही माइंड स्लो डाउन होने लगा आई वेंट ऑफ टू स्लीप. सो दिस इज द थिंग आई हैव टू अंडरस्टैंड कि माइंड फास्ट है तो नहीं आती, जैसे ही मैंने उसको स्लो डाउन किया आई विल बी एबल टू फॉल ऑफ टू स्लीप.

0: नहीं रहे, 4 मास से सो नहीं रहे, क्या होता है? एक बार तो जो शिवानी बेन ने बताया ऐसी परिस्थिति होती, कोई कारण हुआ, आपको 1-2 घंटा नींद नहीं आ रही थी और ठीक से नींद नहीं आई, लेकिन नेक्स्ट डे वो विचार चलना शुरू हो जाती कि कल नींद नहीं आई थी, शायद आज भी नहीं आएगी, तो
1: एक वो स्ट्रेस क्रिएट होना हो रहा है, ओफ वो अब नींद नहीं आएगी, पूरा टाइम ऐसे ऐसे से करूंगा, आई नो आई हैव गॉन थ्रू दैट टुडे,
0: आज नहीं आएगी, सब नेक्स्ट डे नहीं आई तो फाइनल हो गया। थर्ड डे भी भले बहुत कोशिश, लेकिन पहले से कि अभी नींद नहीं आने वाली है, तो ऐसे करके वो एक प्रकार के संस्कार बन जाते हैं नहीं सोने के। तो ये कुछ एक कारण है
1: डॉक्टर पटेल। तो अगर मैं नहीं सो रही हूँ, नहीं सो पा रहे हैं, मतलब जो भी वजह चल रही है, जैसा कि कहा सिस्टर शिवानी ने कि माइंड इतना फास्ट चल रहा है, लॉन्ग टर्म में ये मेरी बॉडी को या मेरे मन को ही कितना इफेक्ट करेगी?
0: एक तो जो हमने ऑलरेडी समझा है कि लैक्टिक एसिड लेवल कम नहीं हो गया, और लैक्टिक एसिड लेवल है वो न्यूरोटिक सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है। आपको इंजेक्शन दिया जाएगा लैक्टिक एसिड का है, तो न्यूरोटिक सिम्टम्स होंगे, अनकंफर्टेबल होगा, नर्वस हो जाएंगे, एंजाइटी होगी, स्ट्रेस हो जाएगा। तो लैक्टिक एसिड बढ़ने से जब नींद से डिप्राइव हुए तो इस प्रकार के न्यूरोटिक सिम्टम्स हो जाएंगे। और साथ साथ में नींद क्यों जरूरी है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को फिर से रिस्टोर करना है, जो नहीं कैटाबॉलिक सारे प्रोसेसेस चले सारा दिन, अब उसको रिस्टोर करना है, एनाबॉलिक प्रोसेसेस चलने चाहिए। वो एनाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं होंगे क्योंकि नींद नहीं आई, तो कैटाबॉलिज्म बढ़ता जाएगा और सभी बॉडी ऑर्गन्स को उससे भी डैमेज होगा।
1: अच्छा, जो उनकी एक्टिविटी है वो कंटिन्यूअस रहेगी,
0: आपकी नहीं एकाग्रता पर इफेक्ट होगी, जो रिकॉल करने की कैपेसिटी है वो रिकॉल करने की कैपेसिटी आपकी कम हो जाएगी, टॉलरेंस कम होगा।
2: अगर हम कोई 1-2 दिन नहीं सोए ठीक से, या कई बार आप आईटी प्रोफेशन में हैं तो आप पूरी रात काम कर रहे हैं, 2-3 दिन अगर हम नहीं सोते हैं, हमारे व्यवहार में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आने लगता है, हम रिएक्ट जल्दी करते हैं जो कि हम पहले नहीं करते थे। टिल 4 डेज बैक मैं इतनी छोटी बात पर नहीं रिएक्ट करती, तो हमें कहते हैं आप थके हुए हैं, आप रेस्ट कर लें ताकि फिर योर पर्सनैलिटी और नेचर विल कम बैक टू नॉर्मल। लेकिन अगर मैं बहुत दिनों से ठीक से नहीं सो रहा, एंड ठीक से सो रहा नहीं डजेंट मीन कि मैं जागृत अवस्था में हूँ, इट ऑल्सो कैन मीन कि शरीर सो रहा है लेकिन मैं नहीं सो रहा अंदर, द माइंड इज स्टिल वर्किंग। तब हम हर रोज अगर थके हुए मन के साथ उठेंगे, फिर उससे काम करवाएंगे, फिर ठीक से नहीं सोएंगे, फिर काम करवाएंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये माइंड कैसा हो जाएगा, हाउ विल इट बिकम? अगर 2 दिन लैक ऑफ स्लीप से हमारा व्यवहार इरिटेटेड हो सकता है, तो अ लॉन्ग टाइम ऑफ नॉट हैविंग स्लेप्ट प्रॉपरली हमारे व्यवहार पर क्या इफेक्ट लाएगा? आज मेजोरिटी हम इसलिए भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं बिकॉज सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम वी हैवंट स्लेप्ट प्रॉपरली, इवन दो वी स्लीपिंग फॉर 6 to 8 hours, बट इंटरनली वी हैवंट स्लेप्ट प्रॉपरली, तो वो हमारा व्यवहार बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर चिड़चिड़ा, फिर गुस्सा, फिर और सारे। अगर जैसे ही माइंड को रेस्ट देना शुरू करते हैं दिन में भी और उसकी वजह से रात में भी, थॉट में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा।
1: तो लेकिन दिन में
0: डीप स्लीप मतलब ये जो बात है ना कि हम नहीं सोए, जो शिवानी बेन बता रहे,
2: जो रेस्ट पीरियड था वो जो चार्जिंग पीरियड वाला
0: डेल्टा स्लीप कहते हैं इसको। स्लीप के कई साइकिल्स होते हैं, एक REM स्लीप कि जिसमें वो बीटा पैटर्न फास्ट चलती है, फिर से कुछ समय के बाद हम डेल्टा स्लीप में जाते हैं। रियल स्लीप इज दैट डेल्टा स्लीप।
1: तो उसका कोई टाइम फिक्स्ड है?
0: टाइम तो एक्चुअली तो ये साइकिल में होता है, परंतु अगर हम अच्छे से तैयारी करके सोए, सही रूप से सोए, तो डेल्टा स्लीप अच्छी हो सकती है।
1: ये एक और जो आजकल का लाइफस्टाइल का पैटर्न है कि रात को नहीं भी सोए, टाइम जो है सोने का जो टाइम है, मैक्सिमम लोग रात को नहीं जल्दी सो पाते हैं एंड देन लेट उठते हैं, खासकर अगर बच्चों को देखते हैं तो स्कूल जाना है वीकडेज पे, तो चाहे जितने भी बजे सोएं सुबह उठ के जाना ही है, लेकिन उसके बाद वीकेंड आया तो कोई 11 बजे, कई 2 बजे, तो ये जो पूरा उठने का जो टाइम है ये क्या ठीक है?
0: ये वास्तव में सही नहीं है। बाय चांस कोशिश तो यही करनी चाहिए कि आप अप्रोक्सीमेटली सही टाइम पर सोओ और सही टाइम पर उठो। फिर भी इत्तफाक कभी मास में 1-2 बार ऐसा हो गया तो भी सवेरे तो उसी टाइम पर उठ जाओ, क्योंकि बॉडी को आदत हो गई है, आपकी बायोलॉजिकल सिस्टम को। अगर रोज जैसे हम लोग 4 बजे उठते हैं तो हमें 4 बजे की वो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो गई है, वो ऑटोमेटिकली उठ सकते हैं। चलो कोई 6 बजे भी उठता है तो उसी समय पर उठ जाओ।

0: ऐसा नहीं कि आज रात को देरी हुई थी तो सवेरे में 9 बजे तक सो रहा हूँ। आपको लगेगा कि मैंने नींद ज्यादा की, परंतु उल्टा आप थके हुए उठेंगे, फ्रेश नहीं उठेंगे। एक बार अगर 6 बजे उठ गए, हो सकता है शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन फिर आपने स्नान आदि कर लिया, तैयार हो गए, तो फ्रेशनेस का अनुभव करेंगे। फिर ठीक है कि 4-5 घंटे के बाद आप समझते हैं कि आज ठीक से नींद नहीं मिली, तो तब फिर बस 20 मिनट की नींद करो, तब लंबी नींद नहीं करो।
1: तो कोई ऐसा टाइम है जो बेस्ट टाइम कहा जाए, जो आज एटलीस्ट हम ज्ञान तो प्राप्त करें?
0: दिन में आप कहते हैं?
1: नहीं, शाम को भी, रात को भी।
0: हाँ हाँ,
1: कोई ऐसा बेस्ट टाइम है जो जिसे बेस्ट माना जाए?
0: हाँ, सचमुच बेस्ट है कि जो नहीं, बड़े भी कहते थे, पहले के समय में भी कहा गया था कि भी 10 के बाद, हमारे दादी प्रकाश मणि जी थे, हमेशा कहते थे, कितने भी लोग है, कहते 10 माना बस, फिर 10 बज गए, अभी रेस्ट करनी है। तो 10 से 2 का समय है वो बेस्ट समय है, कि जब एक तो गहरी नींद भी आती है, वह सात्विक समय भी है कि जब जो रिस्टोरेशन मेटाबॉलिज्म का होना चाहिए वो सही मात्रा में हो जाता है। तो उस समय अगर आप नींद कर लेते हैं तो 5 घंटे की नींद में भी आप फ्रेश होकर के उठेंगे।
1: इस देयर वे अवे, कोई एक तरीका है कि हम जब भी सोएं डीप स्लीप को
0: बिल्कुल
1: महसूस अनुभव करें?
0: हाँ, उसकी कुछ बातें। एक तो कि अभी दिस इज अ बैलेंस, कोई कहे कि मैंने कहा अभी 10 बजे सोना है, और जब इसके साथ साथ जो दूसरी बात आती है कि जब नींद आए तब ही सो। आपको नींद नहीं आ रही है, आप थके हुए नहीं है, तो नहीं सो। लक्ष्य तो ये रखना चाहिए कि हम मॉडरेटली, मतलब अच्छी तरह से थक जाए, बिल्कुल थकावट नहीं है तो भी नींद नहीं आएगी, बहुत ज्यादा थक गए हैं तब भी आपको नींद नहीं आएगी। तो एक कहेंगे कि संतुलित मात्रा में, मॉडरेटली हमें थकना है, ऐसी लाइफस्टाइल को अपनाए सवेरे से, ताकि उस समय तक आप मॉडरेटली टायर्ड है। और जो खाना है वह एटलीस्ट 2 घंटा पहले खा ले। आज अधिकतर जो नींद नहीं आने का यह भी कारण है कि आपने पेट भर के सारा दिन नहीं खाया, डिनर पेट भर के किया और बस 10:30 बजे डिनर किया, अभी 11:15 को आप सो रहे हैं, तो भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो हैवीनेस है अंदर में। 2 घंटे पहले खा ले, भले सोने से पहले आप आधा कप गर्म दूध पी लो तो वो अच्छा है, क्योंकि एसिडिटी को भी कम करेगा, दूध से भी थोड़ी सी नींद आने लगती है, जिसमें ट्रिप्टोफैन है, जैसे चावल है इसमें ट्रिप्टोफैन है। तो डिनर में अगर थोड़ी सी मात्रा में वो ट्रिप्टोफैन लेते हैं तो भी अच्छी गहरी नींद आने में वो मदद मिलती है। और बेड में लेटे लेटे नहीं पढ़ो, ये नहीं कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ जब नींद आएगी सो जाऊंगा, वो भी गलत है। आप अच्छे से टेबल पर पढ़ो, जब आपको लगे भी नींद आ रही है ठीक से, उस समय वातावरण को भी एक अच्छा बना लो। एक तो कईयों के लिए जिनको नींद नहीं आती है, उनके लिए एक एडवाइस अच्छी है कि भी एक स्थान जो आपका निश्चित है वहीं सोने की कोशिश करो, कई लोग और कहीं नहीं सो पाते हैं, और आसपास का वातावरण ठीक हो, हाँ कंफर्टेबल हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत लो टेम्परेचर है तो दिक्कत होगी। सोने से पहले थोड़ा समय मेडिटेशन करो, हाथ पैर अगर गर्म पानी से धो लो, क्योंकि गर्म पानी जब हाथ पैर पर डालते हो तब भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और वह हाथ पैर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ब्रेन को सर्कुलेशन थोड़ा कम मिलेगा, तब भी ऑटोमेटिकली अच्छी नींद आने लगेगी। और फिर मेडिटेशन करो थोड़ा समय, मन को सचमुच पीसफुल बना करके फिर एक राइट पोजीशन ले लो। जैसे ना, सीधे सोना भी अच्छा नहीं है, उल्टा सोना भी अच्छा नहीं है, एक्चुअली एक साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड, एक कंफर्टेबल आप पोजीशन ले लो जहाँ कहीं अननेसेसरी प्रेशर नहीं है, और फिर वैसे लेट जाओ। और बेस्ट तो चीज़ यही है, सोचो कि बस मैं रिलैक्स्ड हूँ। आध्यात्मिक चिंतन भी कर सकते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, अभी ये रेस्ट का समय है, जैसे मैं शरीर को आराम दे रहा हूँ, आत्मा को भी आराम की ज़रूरत है। ऐसे अच्छे शांति के विचार करके बस यही सोचो कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। कई लोग जो सो नहीं पाते उनको ये लगता है कि भी नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। नहीं, आपको नींद की आवश्यकता नहीं है। जो भी इंसोमनिया के पेशेंट है, सबको मैं ये बात बताता हूँ कि भी बार बार देखो, अच्छे से इस बात को समझ लो कि आपको नींद की जरूरत नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। बस आप आराम से लेटे रहो, ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी, वो स्लीप सेंटर अगर एक्टिवेट हो गए, नींद आ जाएगी।
1: तो शिवानी, जैसा कि कहा डॉक्टर साहब ने कि शरीर को आराम की जरूरत है, आत्मा को आराम की जरूरत है, तो इस दौरान आत्मा का आराम क्या हुआ, आत्मा का
2: आराम। I just like to add little bit more to that that we do is रात को सोने से पहले कुछ अच्छा पढ़ लो। यू नो जनरली हमारी जो इन्फॉर्मेशन फीड होती है रात को सोने से पहले भी आजकल थोड़ी सी नेगेटिव है, जो हमने कई बार शेयर किया, सुबह उठते ही इन्फॉर्मेशन, रात को सोने से पहले। तो हम लोग जनरली रात को सोने से पहले मुरली पढ़ लेते हैं, चाहे एक पेज, एक पैराग्राफ, व्हाटएवर, ताकि जो लास्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी अंदर जा रहा है, इट्स वेरी पॉजिटिव, वेरी प्योर, ताकि वो थॉट्स भी उस क्वालिटी की चलेंगी। फिर अपना चार्ट लिख लो छोटा सा, आज सारा दिन में ये सिचुएशन आई, डोंट थिंक अबाउट द सिचुएशन, मेरा क्या रिस्पॉन्स था, क्या हो सकता है, ताकि जो मैंने ब्लॉकेजेस भी, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज भी थे माइंड में, वो रिजॉल्व हो जाएंगे। और एक और चीज जो बहुत अच्छी और बहुत हेल्प करती है, परमात्मा को एक लेटर लिखो, राइट अ लेटर टू बाबा, एंड राइटिंग अबाउट, डोंट हैव टू राइट वेरी लॉन्ग स्टोरीज, जस्ट 5 मिनट्स राइटिंग अबाउट वट एवर टूडे, थॉट्स, फीलिंग्स जो आई, सिचुएशन आई, कहाँ मुझे और क्या कर, जो भी वो क्लॉटिंग है सारी अंदर, जस्ट राइट इट आउट। उससे हम बहुत हल्के हो जाते हैं, एंड एज इफ पूरे जो दिन का था वो पैक ऑफ कर दिया। कई बार हम बिना पैकअप किए सो जाते हैं, तो इसलिए वो इश्यूज भी माइंड में चलते रहते हैं। थोड़ा सा ये पैकअप करें और मेडिटेशन करें, बहुत अच्छी नींद आती है फिर रात को।
1: डॉक्टर साहब उल्टा चलते हैं, अभी तक नींद नहीं आ रही थी तो हमने देखा कि क्या कर रहा है, अब अच्छी नींद है तो क्या परिवर्तन महसूस करूंगी, आई कैन फील गुड राइट नाउ, तो लेकिन क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा?
0: बहुत बड़ा परिवर्तन होगा कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आप ज्यादा क्रिएटिव बनोगे, इवन जो डिफिकल्ट है आपके सामने टास्क है उसको भी अच्छे से आप सॉल्व कर सकोगे, क्योंकि आत्मा को भी रेस्ट मिली, ब्रेन को भी अच्छे से रेस्ट मिल गई। तो जो आत्मा को ब्रेन का उपयोग करना है वो सही कर पाएगा, और क्रिएटिविटी जो आपकी है, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, टॉलरेंस आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, हेल्थ भी, फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। आज कहीं जो आज ब्लड प्रेशर की शिकायत है, सर दर्द है, माइग्रेन, इन सब में भी आपको अच्छी रेस्ट मिल जाए, पॉजिटिव इफेक्ट बॉडी पर भी होगी।
1: और ये जो अमृत वेला पे उठते हैं, जो कहा जाता है कि अमृत वेला पे उठ के मेडिटेशन जो है, उसका भी कोई रेलेवेंस है?
0: हाँ, नहीं, उसका देखो ये साइंटिफिक रीजन है वास्तव में। मैं आपको पहले साइंटिफिक रीजन बताता हूँ, स्पिरिचुअल भी बताता हूँ। फिजियोलॉजिकल रीजन तो यह है कि कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन, पहले भी हमने चर्चा की है कि जिसकी हार्ट पर बहुत बुरी असर होती है, ब्रेन पर बुरी असर होती है, वह सवेरे 3-4 बजे मैक्सिमम पीक पर होता है, फिर धीरे धीरे धीरे कम होने लगता है, और दिन में 3-4 बजे वो ऑलमोस्ट 30% हो जाता है, जो लेवल रात को सवेरे मतलब अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock है, डे टाइम में 4 o'clock, इट इज ऑलमोस्ट 30%। तो वो जो अर्ली मॉर्निंग में हाई लेवल है उसको कम करना जरूरी है। आपने कभी सुना है कि लोगों को हार्ट अटैक आया? कब आया? अर्ली मॉर्निंग में आप देखना, 3-4 बजे मैक्सिमम हार्ट अटैक्स आते हैं। रीजन इज ए कॉर्टिसोल लेवल मैक्सिमम होता है उस समय। तो अगर तब उठ करके अच्छे से ध्यान का अभ्यास करो तो कॉर्टिसोल लेवल को आप कम कर देंगे, और वो कम हुआ तो जो उसके हार्मफुल इफेक्ट है उससे भी आप बच जाएंगे।
1: मतलब अगर तो सुबह सुबह ही अगर हमने उसको कम
0: तो ये साइंटिफिक
2: रीजन है, क्योंकि उस टाइम ज्यादा है ना, उसी टाइम ज्यादा है, तो अगर हम सो रहे हैं इट्स लाइक हमारे अंदर वो डैमेज हो रहा है कि वो हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो रहा है और उसका जो इफेक्ट है ऑर्गन्स पे वो हो रहा है। लेकिन हम उस टाइम उठकर अगर अवेयरनेस के साथ वो थॉट्स क्रिएट करें जिससे वो हार्मोन कम हो जाए तो डैमेज नहीं होगा ना,
0: मेडिटेशन से वो इफेक्ट होगी। और उसमें देखो अब स्पिरिचुअल रीजन भी कि सवेरे जल्दी क्यों उठना है, क्योंकि वह समय है। आज लोग 2 बजे तक भी जाग रहे हैं कहीं, लेकिन आप देखना 2:30-3 के बाद तो सब सो जाते हैं, तो जो नेगेटिव वाइब्रेशन फैल रहा है आसपास का वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, और तब फिर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना बहुत ईजी है ना, तब वो कनेक्शन की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। कहते हैं ना 3G, तो मैं कहता हूँ 30G हो जाएगा, क्योंकि उस समय क्योंकि आपका कनेक्शन परमात्मा से बहुत ही जल्दी लगेगा। और एक किसी ने बहुत ही अच्छा कहा कि भी अमृत वेले उठ के क्यों योग करना है, तब कहते भगवान के पास फ्री डाउनलोडिंग होता है, जो भी आपको लेना है तो आप फ्री ले सकते हैं।
2: अगर नेट पर भी कोई हैवी फाइल डाउनलोड करनी होती है तब कब करते हैं, जब बाकी सब लोगों का कंप्यूटर ऑफ है, क्योंकि सारी वो बैंडविड्थ आपको मिली हुई है. इसी तरह जब मेजोरिटी सो रहे हैं तो सारी नेगेटिव एनर्जी डोमेंट है. आपका जो प्रोसेस है, क्योंकि हम सब पहले नए नए कर रहे हैं ना, तो जब कोई ट्रैफिक नहीं हो रोड पे तब ड्राइविंग करना, द जर्नी इज वेरी स्मूथ. जैसे जैसे 5 बजे का, 6 बजे का, 7 बजे का, एवरीवन इज वेकिंग अप, द एनर्जी इन द एटमोस्फियर बढ़ती जा रही है. अब उतने ट्रैफिक के बीच में आपको अपना चैनल क्रिएट करना पड़ता है, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है.
0: पर जल्दी सोना पड़ेगा, ये बात ठीक है, जल्दी उठना है तो जल्दी सोना पड़ेगा, परंतु वो कर लो तो फिर मॉर्निंग में आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी. मैं स्टूडेंट को भी एडवाइस देता हूँ.
1: आपने, हाँ, ये मैं स्टूडेंट पे आने वाला थी कि स्टूडेंट्स जो है एग्जाम्स के दौरान, और जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि एक बार अगर वो रिदम टूटा, एक बार जब वो जो पूरा टाइम सेट किया हुआ था वो टूटता है, तो उसको वापस लाने में बहुत टाइम लगता है. तो अगर एग्जाम्स के दौरान वो लेट नाइट पढ़ रहे हैं, फिर वो चाहते हैं कि नहीं नॉर्मल जैसे हम पहले जी रहे थे वैसे करें, तो वो वापस ला पाना मुश्किल होता है, तब क्या करें?
0: लेकिन एक बार बस वो साइकिल को ठीक करना है. अगर अपने साइकिल को ठीक किया, अगर 4 बजे उठ गए, पढ़ाई की अच्छे से, अपना दिन का रूटीन किया, दिन में भले माइक्रो स्लीप ले ली, और अगर 4 बजे से आप जागे हो तो देखना 9:30-10 बजे तो गहरी नींद आने लगेगी और साइकिल आपका ठीक हो गया. भले 1-2 दिन लगेंगे, परंतु मॉर्निंग में स्टूडेंट्स को भी मैं एडवाइस देता हूँ कि भले दिक्कत भी लगे, कहीं ये कहते कि हम सवेरे उठ नहीं पाते, रात को कहो 3 बजे तक जाग लेंगे, भले 10 बजे भी सो गए हम 4 बजे नहीं उठ सकते. तो अगर एक बार 4 बजे उठ जाए, खड़े हो जाए, भले वॉकिंग करे, चाय पीने की आदत है चाय पी लो, या तो स्नान कर लो, सबसे अच्छा है कि भाई मेरा डे स्टार्ट हो गया, आप फिर थोड़ी देर मेडिटेशन करके आप पढ़ना शुरू करो, तो वो 2 घंटे की पढ़ाई आपके 6 घंटे की पढ़ाई के बराबर हो सकती है.
1: लेकिन उस दौरान कई बार नींद आ रही होती है,
0: स्नान कर लिया फिर नींद नहीं आएगी. ऐसे ही आप उठे, मुंह धुलाई किया बैठ गए तो शायद नींद आ सकती है.
2: एफर्ट कम, रिजल्ट ज्यादा.
1: जो जिसको हम कर रहे थे,
0: ऐसा स्नान नहीं करना है, ब्रश कर लो अच्छे से, हाथ पे ठीक से धुलाई कर लो, फिर फ्रेश होकर के बैठो, तो नींद नहीं आएगी.
1: शिवानी डॉक्टर पटेल, कई सारे एस्पेक्ट्स हैं उसमें. नींद को हमने सबसे, जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि हम अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन आज जो हमने समझा है, जो ज्ञान की प्राप्ति है, कि इट्स सो इम्पोर्टेंट, ना सिर्फ रिजुविनेशन के लिए बॉडी और माइंड के, बल्कि मेरे पूरे जीवन के लिए. तो वो सही टाइम पे और ये सारे एस्पेक्ट्स के साथ अगर हम आगे बढ़ें, तो ना सिर्फ नींद ठीक से आएगी, बल्कि उसके साथ की जुड़ी जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे हम बच सकते हैं. थैंक यू सो मच. तो ये सारी बातें समझ में आई हैं, अब प्रयास करेंगे, अनुभव हमारा होगा. आज अवेकनिंग में इतना ही, फिर मुलाकात होगी. ओम शांति.

विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें आज द्वितीय दिवस और इसके इस सत्र व्याख्यान में उपस्थित समस्त मान्यवरों, मेरे सहयोगी प्राध्यापकों एवं उपस्थित समस्त विद्यार्थियों का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इस समय हमारे साथ उपस्थित है मंच पर भाषा अभ्यास प्रशाला एवं विचारधारा प्रशाला के संचालक, मराठी एवं अंग्रेजी विभाग के प्रमुख माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मसू बगारे सर, और साथ ही आज की हमारी प्रमुख वक्ता प्रमुख अतिथि आरजे शुभांगी जी बड़गुजर उपस्थित है, और इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। सर्वप्रथम मैं सर से निवेदन करती हूँ कि वे आज के इस सत्र का अध्यक्ष पद स्वीकार करें। सर धन्यवाद। सर हम अपना आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं, और अधिक समय न लेते हुए हम सबसे पहले हमारे अतिथि का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं हमारे अध्यक्ष महोदय से विनती करती हूँ कि वे शुभांगी जी का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर करें। हमारे अध्यक्ष महोदय का सम्मान पुष्प गुच्छ देकर करें।

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साथो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी मकड़ी के उस जाले को देखा है जो हवा में तैरते हुए बिल्कुल अदृश्य सा लगता है? जब तक उस पर धूप की कोई किरण या ओस की कोई बूंद पड़े, तब तक उड़ते हुए छोटे छोटे पतंगों को वह दिखाई ही नहीं देता। पतंगे सोचते हैं कि सामने खुला और साफ आकाश है, वे पूरी आज़ादी से उस तरफ उड़ते हैं और एक ही पल में उस अदृश्य रेशमी धागे में ऐसे उलझ जाते हैं कि जितना फड़फड़ाते हैं उतना ही कसते चले जाते हैं। कोने में बैठी मकड़ी को कोई शोर मचाने की जरूरत नहीं होती, वह चुपचाप सही वक्त का इंतजार करती हैं। हमारे जीवन और हमारी चेतना के साथ भी बिल्कुल यही खेल चल रहा है। हम सोचते हैं कि माया केवल बाहर के धन, मकान या जमीनी जायदाद में है, लेकिन माया का सबसे खतरनाक जाल हमारी सोच, हमारी रुतियों और हमारी सूक्ष्म चेतना के भीतर बिछा हुआ है। कबीर साहब आज हमें उसी अदृश्य जाल और काल के गुप्त वार से सावधान कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह सूत्र। कबीर सुषमी सूरति का जीव न जाने जाल, कबीर सुषमी सूरति का जीव न जाने जाल, कहे कबीरा दूरी कुरी आत्म अदिष्ट काल। कबीर सुषमी सूरति का जीव न जाने जाल, कबीर सुषमी सुरति का

आदिष्ट काल रे साधो आत्म आदिष्ट काल। श्रोताओं, कबीर साहब माया की आंतरिक सूक्ष्मता को उजागर करते हैं। कबीर सुषमी सुरति का यह जो माया और मन का प्रपंच है, यह केवल बाहर की स्थूल दुनिया तक सीमित नहीं है। यह सुषमी सुरति यानी हमारी चेतना, हमारी आंतरिक वृत्तियों और हमारे विचारों के अत्यंत बारीक स्तरों में रेशे रेशे की तरह समाया हुआ है। जीवन जाने जाल और इस संसार का अज्ञानी जीव बाहर की लड़ाइयों में इतना उलझा रहता है कि वह अपने ही भीतर फैले इस सूक्ष्म जाल यानी मोह, सूक्ष्म वासनाओं और अहंकार के फंदे को पहचान ही नहीं पाता। उसे लगता है कि पूरी तरह स्वतंत्र और सुरक्षित है। इस धोखे की अंतिम परिणति को अगली पंक्ति में चेतावनी के रूप में कबीर कहते हैं, कहे कबीरा दूरी कुरी। कबीर पुकार कर कहते हैं कि इस अज्ञान के कारण यह आत्म यानी जीवात्मा अपने निज घर और परमात्मा से दूरी कुरी यानी बहुत दूर भटकाव के कोने में जा पड़ी है। आत्म अधिष्ट काल और दूसरी तरफ आदिष्ट काल यानी वह सर्वक्रासिक काल, वंतहीन समय चक्र हर दिशा से गुप्त रूप से बिना कोई आहार दिए इस आत्मा पर घात लगाए बैठा है। जब तक जीव अपने सूक्ष्म बंधनों को समझता है, तब तक काल उसे अपने गालों में समा लेता है। यह दोहा अविद्या के आवरण और काल पाश का महाविश्लेषण है। वेदांत में माया की दो शक्तियां मानी गई हैं, विक्षेप और आवरण। स्थूल विकारों से बचना फिर भी आसान है, लेकिन सूक्ष्म वासनाएं, जैसे कि बहुत धार्मिक हूँ, मैं ज्ञानी हूँ या पारलोक के सुखों की सूक्ष्म इच्छा, साधक को बहुत बारीक स्तर पर बांध लेती हैं। आदिष्ट काल का दार्शनिक अर्थ है कि प्रकृति का काल नियम किसी को नहीं बख्शता। कबीर समझा रहे हैं कि जब तक साधक अपनी सूरती को इस सूक्ष्म जालों से छुड़ाकर केवल विशुद्ध साक्षी भाव में स्थिर नहीं करता, तब तक काल के चक्रव्यूह से पूर्ण मुक्ति संभव नहीं है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा रुक कर अपने ही विचारों के बारीक परतों को देखिए। हम बाहर से तो बहुत शांत, सज्जन और धार्मिक दिखते हैं, लेकिन क्या हमारे भीतर दूसरों की आलोचना, सूक्ष्म ईर्ष्या, मान सम्मान की भूख या अपनी अच्छाइयों का कोई छिपा हुआ घमंड काम नहीं कर रहा है? यही वह सूक्ष्मी जाल है जो हमारे भीतर ही भीतर बांधे रखता है और हमें पता भी नहीं चलता। आज कोशिश कीजिए अपने भीतर की इस सूक्ष्म पकड़ को ढीला करने की, अपनी चेतना के हर कोने को सद्गुरु के विवेक और उस राम नाम के प्रकाश से साफ कीजिए। जब आप अपनी आत्मा को इन बारीक जालों से मुक्त करके विशुद्ध सत्य में टिका देंगे, तो काल का कोई भी भय आपको छू नहीं पाएगा और आप सहज ही उस परम अभय पद को प्राप्त कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साथ हो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जीवन को एक नए नजरिए से देखा, बहुत सारी बातें फिर सामने आई हैं कि किस तरह के मेरे थॉट्स होते हैं, और जब थॉट्स को मैं सही रास्ते पर लेकर आती हूँ तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, ना सिर्फ मन के इमोशंस के बल्कि शरीर के भी, जो ओपन हो जाते हैं। आगे कुछ और बातें हैं जो इस कड़ी में जानते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, बात हमने कर ली आज माइंड की भी, बात हमने करी बॉडी की, और आई थिंक इस प्लेटफॉर्म पर इस श्रृंखला में पहली बार हमने बात की थी कि किस तरह से जो माइंड का पूरा प्रभाव है, थॉट्स का प्रभाव मेरे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पर कैसे पड़ रहा था, ब्लॉकेजेस को ओपन करने की भी बात की। बहुत बार ये कहा जाता है कि माइंड बॉडी का जो बैलेंस है उसमें स्लीप या जो हमारी नींद है उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, और आज इसी प्लेटफॉर्म पर या कई बार प्रोग्राम्स में बात ये होती है कि हम या हमारे बच्चे, हमारे परिवार वाले सबसे ज्यादा स्लीप डिप्राइव्ड है। तो क्या नींद का जो है वो बहुत असर है हमारे जीवन में?
1: बिल्कुल, बहुत ही डीप असर है, क्योंकि एक तो हम ये समझे कि नींद की जरूरत क्यों है। इस सारा दिन जो भी हम कार्य करते हैं, भले आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे शरीर में भी परिवर्तन आते हैं। एक केमिकल डेवलप होता है जिसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बढ़ता जाता है सारे दिन में, फिर अब उसे कम करने की आवश्यकता है। अगर वो कम नहीं हुआ तो आपको थकावट होगी, चिड़चिड़ापन होगा, टॉलरेंस कम हो जाएगा। तो स्लीप एक बहुत ही पावरफुल माध्यम है कि जिससे लैक्टिक एसिड का लेवल जो है वो कम हो जाता है।
0: तो ये प्रोड्यूस क्या क्यों होता है
1: लैक्टिक एसिड? तो इसलिए प्रोड्यूस, सारा दिन जब हम कार्य करते हैं तब कहीं ना कहीं छोटी मोटी स्ट्रेस भी होती है, और कोई चीज है आपकी इच्छा के अनुसार नहीं भी हो रही है, जब इन सभी परिस्थितियों में ब्लड वेसल्स थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो इससे जो जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतना ऑक्सीजन मसल्स को नहीं मिलता है, और जो मेटाबॉलिज्म हो रही है उसमें ऑक्सीजन की कमी आती है। अगर पूरी मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाए तो लैक्टिक एसिड निर्माण नहीं होता है, एनर्जी निर्माण होती है, लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और जैसे जैसे लैक्टिक एसिड बढ़ता जाएगा तो वह सिम्टम्स निर्माण होंगे, और उसे कम करने की जरूरत है। दूसरी बात कि भी सारे दिन में ऐसी कई चीजें होती है कि जो आपको अच्छी नहीं लगती है, जिसको रिजॉल्व करने की भी जरूरत है, और हम जागृत रूप से उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो जब आप सोते हैं तब स्वप्न आते हैं, बल कई लोग स्वीकार न भी करें परंतु स्वप्न आते हैं जरूर, वह स्वप्न में भी आपकी जो दिन की बातें वो रिजॉल्व होती है और आप फिर फ्रेशनेस का सवेरे अनुभव करते हो।
0: अच्छा, तो कई बार तो वो स्वप्न जो है वो ऐसा नहीं फील हमें करवाते, कई बार तो सपने याद नहीं रहते, और कई बार सपने जो हैं वो बड़ा हमें डरा देते हैं, थका देते हैं ज्यादा, तो फिर हम तो फ्रेश नहीं
1: महसूस करते। वो तो कुछ नहीं, कुछ सिर्फ एंजाइटी जो ड्रीम्स है ना, जिसमें डरावनापन है, वो सही है कि वो आपको थका भी सकते हैं, परंतु और जो अधिकतर स्वप्न है उसमें आपके मन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होते हैं, और स्वप्न में आप चीज जैसी है वैसी नहीं देखते हैं कि मैं आपके साथ नाराज हूं, तो वो बात स्वप्न में नहीं आएगी और कोई सिंबल्स के रूप में आएगी, और हो सकता है कि वो नाराजगी वह रिजॉल्व हो जाए।
0: अच्छा, वही कहीं सपने में रिजॉल्व,
1: स्वप्न में भी रिजॉल्व हो जाए, कहीं सिंबल्स भी आएंगे, सिर्फ नाराजगी नहीं, मेरी कहीं इच्छाएं भी है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो पा रहा हूं, तो भी मेरे अंदर वो सप्रेशन है, अंदर में फीलिंग है, लेकिन स्वप्न में कुछ आएगा,
0: तो
1: ऐसे सिंबल्स आएंगे या मैं उड़ रहा हूं ऐसी कोई बात आएगी, और उससे जो इंटरनल सबकॉन्शियसली वो जो डिजायर है वो डिजायर रिजॉल्व हो जाएगा।
0: अच्छा, उसके कारण जो ब्लॉकेज हो रहा होगा। सिस्टर शिवानी, अगर स्लीप इतनी इंपॉर्टेंट है, यू नो, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और वो उसको कम करना जरूरी है, दूसरा इतनी सारी चीजें रिजॉल्व हो रही हैं, हम रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं आजकल? वी जस्ट डोंट वांट टू स्लीप। आई मेट अ चाइल्ड, वो 13-14 साल की, एंड शी सेज कि मैं सोना ही नहीं चाहती, सोना मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है।
2: सो यू हैव गिवन द आंसर कि उनको लगता है कि सोना वेस्ट ऑफ टाइम है क्योंकि वो इतना कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो सो कर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। बट ये भी तो लैक ऑफ नॉलेज है, ये भी तो लैक ऑफ अवेयरनेस है कि मैं जिसने वो अचीव करना है, इवन इफ इट्स एन अचीवमेंट, अगर मैं हेल्दी नहीं, मेंटली भी, फिजिकली भी, आई विल नेवर बी एबल टू अचीव. हम सिर्फ उस टाइम को देख रहे हैं कि ना सोकर हम इतना समय बचा लेंगे, लॉन्ग टर्म उसका जो डैमेज हो रहा है, वी आर नॉट लुकिंग एट इट. दिस इज टोटली इग्नोरेंस ऑफ द सेल्फ. एक्चुअली ये सारी चीजें जो आज हम कर रहे हैं, इग्नोरेंट है हम टोटली अपनी ही वेलबींग के बारे में.
0: वेरी ट्रू. इनफैक्ट नींद आती ही नहीं है.
1: मूल कारण को एक तो समझे. मूल कारण तो है हमारी चिंताएं, एंग्जाइटी, अंदर का टेंशन. नींद क्या है? वास्तव में नेचुरल प्रोसेस है. जो हाइपोथैलेमस की बात कही थी ना, हाइपोथैलेमस में बस वही स्विचिस है, स्लीप सेंटर जिसको कहते हैं. अगर वो स्लीप सेंटर एक्टिवेट हो जाए तो आपको इमीडिएटली नींद आने लगेगी. परंतु सारे दिन के टेंशन, एंग्जाइटी और चीजों को लेकर के आप वो स्लीप सेंटर्स को एक्टिवेट ही नहीं होना देते हैं, क्योंकि डिटैच नहीं होते. जब डिटैच होते हैं तो ऑटोमेटिकली स्लीप सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं.
0: वो कोई फिर बटन है उसका?
1: हाँ, बटन है वास्तव में, और वो नेचुरल है. वैसा कोई नहीं है कि उस इलेक्ट्रोड, सचमुच इलेक्ट्रोड प्रेस करो, उसको स्टिमुलेट करो तो नींद आने लगी. परंतु ऐसा तो नहीं कर सकते, नेचुरल प्रोसेस में होना चाहिए.
2: हम सब ने जीवन में कोई ना कोई एक रात ऐसी एक्सपीरियंस की होगी जब नींद नहीं आ रही थी. नॉट नेसेसरी कि पूरी रात नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अगर मेरा रोज का टाइम 10 है, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, नींद नहीं आ रही थी, एंड वो कोई ना कोई ऐसा दिन था व्हेन देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन इन माय माइंड. कुछ हुआ है, कोई बात हुई है, एंड वो चल रहा है मेरे माइंड में. इसका मतलब कि अगर मन में थॉट्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं, बहुत फास्ट स्पीड पे चल रहे हैं, आप लेटे भी हुए हैं, आपका माइंड ऑफ नहीं हो रहा, मतलब मन की जो सोचने की गति है वो धीरे नहीं हो रही है. बेसिकली यही है कि मेरी गाड़ी फर्स्ट गियर में चल रही है, वो स्टॉप पे आ ही नहीं रही, न्यूट्रल में जा ही नहीं रही है. कि अब क्या हुआ, ये हमें कभी कभी हुआ करता था, जिस दिन कोई चिंता थी, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई थी. अब चिंताओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, हमारे सामने आने वाले चैलेंजेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, चिंताओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है. तो कई दिन ऐसे हम एक्सपीरियंस करते हैं कि नींद नहीं आ रही है. रीजन, सारा दिन थॉट्स बहुत फास्ट चल रहे थे. शाम को घर आए, क्या किया, टीवी देखा, कोई फिक्शन नॉवल पढ़ा, न्यूज़ देखी, कोई सीरियल देखा, कभी तो हॉरर शो है, कभी वायलेंट है. थॉट्स को स्लो डाउन करने के बजाय और फास्ट फास्ट फास्ट फास्ट, फिर अपने पर्टिकुलर टाइम पर जाकर लेट गए और सोचा लेटे तो नींद आ जाएगी. कैसे आएगी? माइंड को स्लो डाउन ही नहीं कर पा रहे. देन वी से कि आई वांट टू स्लीप, बट आई एम नॉट बीइंग एबल टू फॉल ऑफ टू स्लीप बिकॉज़ आई डोंट नो द आर्ट ऑफ स्लोइंग डाउन माय माइंड. जितना हम इस पर ध्यान दिन में रखते हैं, फिर रात को वो बहुत ईजी हो जाता है. अगर हम अपने माइंड के थॉट्स पर सारा दिन ध्यान रखें, ये स्ट्रेस, ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं, इसको स्लो डाउन करते जाएं, बीच बीच में पॉज करें, वो जो हर एक घंटे के बाद एक मिनट करें, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी. अगर आप रात को सोने से पहले थोड़ी देर मेडिटेशन करें, बहुत सारे भाई बहने हैं सेंटर पर आते हैं, कहेंगे नींद नहीं आती, हमें बिल्कुल नींद नहीं आती. अब आप उनको सबके साथ मेडिटेशन के लिए बिठाइए, या अकेले भी मेडिटेशन के लिए बिठाइए, जैसे ही मेडिटेशन कमेंट्री शुरू होगी,
0: आपको नींद आती,
2: आपको नींद आती.
0: आई नो, दिस हैपेंड विद मी आल्सो,
2: यस,
0: यू नो,
2: व्हिच इज अ साइन कि ये काफी समय से अच्छी तरह से सो नहीं रहे हैं. अब बहुत कहेंगे कि घर पे नहीं नींद आती, सेंटर पर आकर तो नींद आ जाती है. क्योंकि जैसे ही किसी ने आपको वो मेडिटेशन कमेंट्री दी, वातावरण क्रिएट किया, सूदिंग म्यूजिक था, आपके माइंड स्लो डाउन होने लगा. क्योंकि मैं स्लीप डिप्राइव्ड हूँ, जैसे ही माइंड स्लो डाउन होने लगा, आई वेंट ऑफ टू स्लीप. सो दिस इज द थिंग आई हैव टू अंडरस्टैंड कि माइंड फास्ट है तो नहीं आती, जैसे ही मैंने उसको स्लो डाउन किया, आई विल बी एबल टू फॉल ऑफ टू स्लीप.
1: और भी कुछ कारण समझने चाहिए. एक तो कारण है, कई बार दिन में हम काफी सो लेते हैं. अगर दिन में आपने 2 घंटा नींद कर ली है तो फिर पॉसिबल है कि रात को आपको जल्दी नींद नहीं आएगी. और एक कारण है कि इवनिंग में आपने चाय कॉफी ले ली, दे आर स्टिम्युलेंट्स, तो भी फिर रात्रि को आपको जो है जल्दी से नींद नहीं आएगी. और एक कारण जो मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है, जो कहते हैं हम 2 मास से सो नहीं रहे, 4 मास से सो नहीं रहे, क्या होता है, एक बार तो जो शिवानी बेन ने बताया ऐसी परिस्थिति होती, कोई कारण हुआ, आपको 1-2 घंटा नींद नहीं आ रही थी और ठीक से नींद नहीं आई, लेकिन नेक्स्ट डे वो विचार चलना शुरू हो जाती कि कल नींद नहीं आई थी, शायद आज भी नहीं आएगी. तो
0: एक वो स्ट्रेस क्रिएट होना रहता है, ओफ वो अब नींद नहीं आएगी, पूरा टाइम ऐसे ऐसे करूंगा, आई नो आई हैव गॉन थ्रू दैट,
1: आज नहीं आएगी, सब वो नेक्स्ट डे नहीं आई, तो फाइनल हो गया। थर्ड डे भी भले बहुत कोशिश, लेकिन पहले से कि अभी नींद नहीं आने वाली है, तो ऐसे करके वो एक प्रकार के संस्कार बन जाते हैं नहीं सोने के। तो ये कुछ एक कारण है
0: डॉक्टर पटेल। तो अगर मैं नहीं सो रही हूँ, नहीं सो पा रहे हैं, मतलब जो भी वजह चल रही है, जैसा कि कहा सर शिवानी ने कि माइंड इतना फास्ट चल रहा है, लॉन्ग टर्म में ये मेरी बॉडी को या मेरे मन को ही कितना इफेक्ट करेगा?
1: एक तो जो हमने ऑलरेडी समझा है कि लैक्टिक एसिड लेवल कम नहीं होगा, और लैक्टिक एसिड लेवल है वो न्यूरोटिक सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है। आपको इंजेक्शन दिया जाएगा लैक्टिक एसिड का है, तो न्यूरोटिक सिम्टम्स होंगे, अनकंफर्टेबल होगा, नर्वस हो जाएंगे, एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस हो जाएगा। तो लैक्टिक एसिड बढ़ने से जब नींद से डिप्राइव हुए तो इस प्रकार के न्यूरोटिक सिम्टम्स हो जाएंगे। और साथ साथ में नींद क्यों जरूरी है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को फिर से रिस्टोर करना है, जो नहीं कैटाबॉलिक सारे प्रोसेसेस चले सारा दिन, अब उसको रिस्टोर करना है, एनाबॉलिक प्रोसेसेस चलने चाहिए। वो एनाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं होंगे क्योंकि नींद नहीं आई, तो कैटाबॉलिज्म बढ़ता जाएगा और सभी बॉडी ऑर्गन्स को उससे भी डैमेज होगा।
0: अच्छा, जो उनकी एक्टिविटी है वो कंटिन्यूअस रहेगी,
1: आपकी नहीं एकाग्रता पर इफेक्ट होगी। जो रिकॉल करने की कैपेसिटी है, वो रिकॉल करने की कैपेसिटी आपकी कम हो जाएगी, टॉलरेंस कम होगा।
2: अगर हम कोई एक दो दिन नहीं सोए ठीक से, या कई बार यू नो आप आईटी प्रोफेशन में हैं तो आप पूरी रात काम कर रहे हैं, दो रातें, दो तीन दिन अगर हम नहीं सोते हैं, हमारे व्यवहार में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आने लगता है, हम रिएक्ट जल्दी करते हैं जो कि हम पहले नहीं करते थे। टिल फोर डेज बैक मैं इतनी छोटी बात पर नहीं रिएक्ट करती, तो हमें कहते हैं आप थके हुए हैं, आप रेस्ट कर लें ताकि फिर योर यू नो योर पर्सनालिटी और नेचर विल कम बैक टू नॉर्मल। लेकिन अगर मैं बहुत दिनों से ठीक से नहीं सो रहा, एंड ठीक से सो रहा नहीं डजंट मीन कि मैं जागृत अवस्था में हूँ, इट ऑल्सो कैन मीन कि शरीर सो रहा है लेकिन मैं नहीं सो रहा अंदर, द माइंड इज स्टिल वर्किंग। तब हम हर रोज अगर थके हुए मन के साथ उठेंगे, फिर उससे काम करवाएंगे, फिर ठीक से नहीं सोएंगे, फिर काम करवाएंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये माइंड कैसा हो जाएगा, हाउ विल इट बिकम? अगर दो दिन लैक ऑफ स्लीप से हमारा व्यवहार इरिटेटेड हो सकता है, तो अ लॉन्ग टाइम ऑफ नॉट हैविंग स्लेप्ट प्रॉपरली हमारे व्यवहार पर क्या इफेक्ट लाएगा? आज मेजोरिटी हम इसलिए भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं बिकॉज सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम वी हैवंट स्लेप्ट प्रॉपरली, इवन दो वी स्लीपिंग फॉर 6 to 8 hours, बट इंटरनली वी हैवंट स्लेप्ट प्रॉपरली, तो वो हमारा व्यवहार बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर चिड़चिड़ा, फिर गुस्सा, फिर और सारे। अगर जैसे ही माइंड को रेस्ट देना शुरू करते हैं दिन में भी और उसकी वजह से रात में भी, थॉट में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा।
0: तो लेकिन दिन में
1: डीप स्लीप मतलब ये जो बात है ना कि हम नहीं सोए, जो शिवानी बेन बता रहे,
2: जो रेस्ट पीरियड था वो जो चार्जिंग पीरियड वाला है,
1: डेल्टा स्लीप कहते हैं इसको। स्लीप के कई साइकिल्स होते हैं, एक REM स्लीप की जिसमें वो बीटा पैटर्न फास्ट चलती है, फिर से कुछ समय के बाद हम डेल्टा स्लीप में जाते हैं। रियल स्लीप इज दैट डेल्टा स्लीप।
0: तो उसका कोई टाइम फिक्स्ड है?
1: टाइम तो एक्चुअली तो ये साइकिल में होता है, परंतु अगर हम अच्छे से तैयारी करके सोए, सही रूप से सोए, तो डेल्टा स्लीप अच्छी हो सकती है।
0: ये एक और जो आजकल का लाइफस्टाइल का पैटर्न है कि रात को नहीं भी सोए, टाइम जो है सोने का जो टाइम है, मैक्सिमम लोग रात को नहीं जल्दी सो पाते हैं एंड देन लेट उठते हैं। खासकर अगर बच्चों को देखते हैं तो स्कूल जाना है, वीकडेज पे तो चाहे जितने भी बजे सोएं सुबह उठ के जाना ही है, लेकिन उसके बाद वीकेंड आया तो कोई 11 बजे, कई 2 बजे, तो ये जो पूरा उठने का जो टाइम है ये क्या ठीक है?
1: ये वास्तव में सही नहीं है। बाई चांस कोशिश तो ये करनी चाहिए कि आप अप्रोक्सीमेटली सही टाइम पर सोओ और सही टाइम पर उठो, फिर भी इत्तेफाक

0: 9 बजे तक सो रहा हूं, आपको लगेगा कि मैंने नींद ज्यादा की, परंतु उल्टा आप थके हुए उठेंगे, फ्रेश नहीं उठेंगे। एक बार अगर 6 बजे उठ गए, हो सकता है शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन फिर आपने स्नान आदि कर लिया, तैयार हो गए, तो फ्रेशनेस का अनुभव करेंगे। फिर ठीक है कि 4-5 घंटे के बाद आप समझते हैं कि आज ठीक से नींद नहीं मिली, तो तब फिर बस 20 मिनट की नींद करो, तब लंबी नींद नहीं करो।
1: तो कोई ऐसा टाइम है जो बेस्ट टाइम कहा जाए, जो आज एटलीस्ट हम ज्ञान तो प्राप्त करें?
0: दिन में आप कहते हैं?
1: नहीं, शाम को भी, रात को भी।
0: हाँ हाँ,
1: कोई ऐसा बेस्ट टाइम है जो जिसे बेस्ट माना जाए?
0: हाँ, सचमुच बेस्ट है कि जो नहीं, बड़े भी कहते थे, पहले के समय में भी कहा गया था कि भी 10 के बाद, हमारे दादी प्रकाशमणि जी थे, हमेशा कहते थे, कितने भी लोग है, कहते 10 माना बस, फिर 10 बज गए, अभी रेस्ट करनी है। तो 10 से 2 का समय है वह बेस्ट समय है, कि जब एक तो गहरी नींद भी आती है, वह सात्विक समय भी है कि जब जो रिस्टोरेशन मेटाबॉलिज्म का होना चाहिए वो सही मात्रा में हो जाता है। तो उस समय अगर आप नींद कर लेते हैं तो 5 घंटे की नींद में भी आप फ्रेश होकर के उठेंगे।
1: इस वे कोई एक तरीका है कि हम जब भी सोए डीप स्लीप को
0: बिल्कुल
1: महसूस कर पाए, अनुभव करें?
0: हाँ, उसकी कुछ बातें। एक तो कि अभी दिस इज अ बैलेंस, कोई कहेगा मैंने कहा अभी 10 बजे सोना है, और जब इसके साथ साथ जो दूसरी बात आती है कि जब नींद आए तब ही सो, आपको नींद नहीं आ रही है, आप थके हुए नहीं है तो नहीं सो। लक्ष्य तो ये रखना चाहिए कि हम मॉडरेटली, मतलब अच्छी तरह से थक जाए, बिल्कुल थकावट नहीं है तो भी नींद नहीं आएगी, बहुत ज्यादा थक गए हैं तब भी आपको नींद नहीं आएगी। तो एक कहेंगे कि संतुलित मात्रा में, मॉडरेटली हमें थकना है, ऐसी लाइफस्टाइल को अपनाएं सवेरे से, ताकि उस समय तक आप मॉडरेटली टायर्ड है। और जो खाना है वह एटलीस्ट 2 घंटा पहले खा ले। आज अधिकतर जो नींद नहीं आने का यह भी कारण है कि आपने पेट भर के सारा दिन नहीं खाया, डिनर पेट भर के किया और बस 10:30 बजे डिनर किया, अभी 11:15 को आप सो रहे हैं, तो भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो हैवीनेस है अंदर में। 2 घंटे पहले खा ले, भले सोने से पहले आप आधा कप गर्म दूध पी लो तो वो अच्छा है, क्योंकि एसिडिटी को भी कम करेगा, दूध से भी थोड़ी सी नींद आने लगती है, जिसमें ट्रिप्टोफैन है, जैसे चावल है इसमें ट्रिप्टोफैन है। तो डिनर में अगर थोड़ी सी मात्रा में वो ट्रिप्टोफैन लेते हैं तो भी अच्छी गहरी नींद आने में वो मदद मिलती है। और बेड में लेटे लेटे नहीं पढ़ो, ये नहीं कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ जब नींद आएगी सो जाऊंगा, वो भी गलत है। आप अच्छे से टेबल पर पढ़ो, जब आपको लगे भी नींद आ रही है ठीक से, उस समय वातावरण को भी एक अच्छा बना लो। एक तो कईयों के लिए जिनको नींद नहीं आती उनके लिए एक एडवाइस अच्छी है कि भी एक स्थान जो आपका निश्चित है वहीं सोने की कोशिश करो, कई लोग और कहीं नहीं सो पाते हैं, और आसपास का वातावरण ठीक हो, हाँ कंफर्टेबल हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत लो टेम्परेचर है तो दिक्कत होगी। सोने से पहले थोड़ा समय मेडिटेशन करो, हाथ पैर अगर गर्म पानी से धो लो, क्योंकि गर्म पानी जब हाथ पैर पर डालते हो तब भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और वह हाथ पैर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ब्रेन को सर्कुलेशन थोड़ा कम मिलेगा, तब भी ऑटोमेटिकली अच्छी नींद आने लगेगी। और फिर मेडिटेशन करो थोड़ा समय, मन को सचमुच पीसफुल बना करके फिर एक राइट पोजीशन ले लो, जैसे ना सीधे सोना भी अच्छा नहीं है, उल्टा सोना भी अच्छा नहीं है, एक्चुअली एक साइड राइट साइड या लेफ्ट साइड एक कंफर्टेबल आप पोजीशन ले लो जहाँ कहीं अननेसेसरी प्रेशर नहीं है, और फिर वैसे लेट जाओ। और बेस्ट तो चीज यह सोचो कि बस मैं रिलैक्स्ड हूँ, आध्यात्मिक चिंतन भी कर सकते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, अभी ये रेस्ट का समय है, जैसे मैं शरीर को आराम दे रहा हूँ आत्मा को भी आराम की जरूरत है, ऐसे अच्छे शांति के विचार करके बस यही सोचो कि मुझे रेस्ट की जरूरत है। कई लोग जो सो नहीं पाते उनको ये लगता है कि भी नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, नहीं, आपको नींद की आवश्यकता नहीं है। जो भी इंसोमनिया के पेशेंट है सबको मैं ये बात बताता हूँ कि भी बार बार देखो, अच्छे से इस बात को समझ लो कि आपको नींद की जरूरत नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। बस आप आराम से लेटे रहो, ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी, वो स्लीप सेंटर अगर एक्टिवेट हो गए नींद आ जाएगी।
1: तो शिवानी, जैसा कि कहा डॉक्टर साहब ने कि शरीर को आराम की जरूरत है, आत्मा को आराम की जरूरत है, तो इस दौरान आत्मा का आराम क्या हुआ आत्मा

0: I would just like to add a little bit more to that. That we do is, रात को सोने से पहले कुछ अच्छा पढ़ लो. You know, generally हमारी जो information feed होती है रात को सोने से पहले भी आजकल थोड़ी सी negative है. जो हमने कई बार share किया, सुबह उठते ही information, रात को सोने से पहले. तो हम लोग generally रात को सोने से पहले मुरली पढ़ लेते हैं, चाहे एक पेज, एक paragraph, whatever. ताकि जो लास्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी अंदर जा रहा है, इट्स वेरी पॉजिटिव, वेरी प्योर, ताकि वो थॉट्स भी उस क्वालिटी की चलेंगी. फिर अपना चार्ट लिख लो छोटा सा, आज सारा दिन में ये सिचुएशन आई, डोंट थिंक अबाउट द सिचुएशन, मेरा क्या रिस्पॉन्स था, क्या हो सकता है, ताकि जो मैंने ब्लॉकेजेस भी, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज भी थे माइंड में, वो रिजॉल्व हो जाएंगे. और एक और चीज जो बहुत अच्छी और बहुत हेल्प करती है, परमात्मा को एक लेटर लिखो. राइट अ लेटर टू बाबा एंड राइटिंग अबाउट, डोंट हैव टू राइट वेरी लॉन्ग स्टोरीज, जस्ट 5 मिनट्स राइटिंग अबाउट वट एवर टूडे, थॉट्स, फीलिंग्स जो आई, सिचुएशन आई, कहाँ मुझे और क्या, जो भी वो क्लॉटिंग है सारी अंदर, जस्ट राइट इट आउट. उससे हम बहुत हल्के हो जाते हैं, एंड एज इफ पूरे जो दिन का था वो पैक ऑफ कर दिया. कई बार हम बिना पैकअप किए सो जाते हैं, तो इसलिए वो इश्यूज भी माइंड में चलते रहते हैं. थोड़ा सा ये पैकअप करें और मेडिटेशन करें, बहुत अच्छी नींद आती है फिर रात को.
1: डॉक्टर साहब, उल्टा चलते हैं. अभी तक नींद नहीं आ रही थी, तो हमने देखा कि क्या कर रहा है. अब अच्छी नींद है, तो क्या परिवर्तन महसूस करूंगी? आई कैन फील गुड राइट नाउ, तो लेकिन क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा?
2: बहुत बड़ा परिवर्तन होगा कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आप ज्यादा क्रिएटिव बनोगे. इवन जो डिफिकल्ट है आपके सामने टास्क है, उसको भी अच्छे से आप सॉल्व कर सकोगे, क्योंकि आत्मा को भी रेस्ट मिली, ब्रेन को भी अच्छे से रेस्ट मिल गई. तो जो आत्मा को ब्रेन का उपयोग करना है वो सही कर पाएगा, और क्रिएटिविटी जो आपकी है, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, टॉलरेंस आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, हेल्थ भी, फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी. आज कहीं जो आज ब्लड प्रेशर की शिकायत है, सर दर्द है, माइग्रेन, इन सब में भी आपको अच्छी रेस्ट मिल जाए, पॉजिटिव इफेक्ट बॉडी पर भी होगी.
1: और ये जो अमृत वेला पे उठते हैं, जो कहा जाता है कि अमृत वेला पे उठ के मेडिटेशन जो है, उसका भी कोई रेलेवेंस है?
2: नहीं, उसका देखो साइंटिफिक रीजन है. वास्तव में मैं आपको पहले साइंटिफिक रीजन बताता हूँ, स्पिरिचुअल भी बताता हूँ. फिजियोलॉजिकल रीजन तो यह है कि कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन, पहले भी हमने चर्चा की है कि जिसकी हार्ट पर बहुत बुरी असर होती है, ब्रेन पर बुरी असर होती है, वह सवेरे 3-4 बजे मैक्सिमम पीक पर होता है. फिर धीरे धीरे धीरे कम होने लगता है, और दिन में 3-4 बजे वो ऑलमोस्ट 30% हो जाता है. जो लेवल रात को सवेरे मतलब अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock है, डे टाइम में 4 o'clock, इट इज ऑलमोस्ट 30%. तो वो जो अर्ली मॉर्निंग में हाई लेवल है उसको कम करना जरूरी है. आपने कभी सुना है कि लोगों को हार्ट अटैक आया? कब आया? अर्ली मॉर्निंग में आप देखना, 3 बजे 4 बजे मैक्सिमम हार्ट अटैक आते हैं. रीजन इज ए कॉर्टिसोल लेवल मैक्सिमम होता है उस समय. तो अगर तब उठ करके अच्छे से ध्यान का अभ्यास करो तो कॉर्टिसोल लेवल को आप कम कर देंगे. और वो कम हुआ तो जो उसकी हार्मफुल इफेक्ट है उससे भी आप बच जाएंगे.
1: मतलब अगर तो सुबह सुबह ही अगर हमने उसको कम,
2: तो ये साइंटिफिक
0: रीजन है, उस टाइम ज्यादा है ना. उसी टाइम ज्यादा है, तो अगर हम सो रहे हैं, इट्स लाइक हमारे अंदर वो डैमेज हो रहा है कि वो हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, और उसका जो इफेक्ट है ऑर्गन्स पे वो हो रहा है. लेकिन हम उस टाइम उठकर अगर अवेयरनेस के साथ वो थॉट्स क्रिएट करें जिससे वो हार्मोन कम हो जाए, तो डैमेज नहीं होगा ना.
2: मेडिटेशन से वो इफेक्ट होगी. और उसमें देखो अब स्पिरिचुअल रीजन भी, कि भी सवेरे जल्दी क्यों उठना है, क्योंकि वह समय है. आज लोग 2 बजे तक भी जाग रहे हैं कहीं, लेकिन आप देखना 2:30-3 के बाद तो सब सो जाते हैं. तो जो नेगेटिव वाइब्रेशन फैल रहा है आसपास का, वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है. और तब फिर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना बहुत ईजी है ना. तब वो कनेक्शन की स्पीड बहुत बढ़ जाती है. कहते हैं ना 3G, तो मैं कहता हूँ 30G हो जाएगा, कि उस समय कि आपका कनेक्शन परमात्मा से बहुत ही जल्दी लगेगा. और एक किसी ने बहुत ही अच्छा कहा कि भी अमृत वेले उठ के क्यों योग करना है, तब कहते भगवान के पास फ्री डाउनलोडिंग होता है, जो भी आपको लेना है तो आप फ्री ले सकते हैं. फ्री डेट टाइम में फ्री डाउनलोड.
0: अगर नेट पर भी कोई हैवी फाइल डाउनलोड करनी होती है तब कब करते हैं? जब बाकी सब लोगों का कंप्यूटर ऑफ है, क्योंकि सारी वो बैंडविड्थ आपको मिली हुई है. इसी तरह जब मेजोरिटी सो रहे हैं तो सारी नेगेटिव एनर्जी डोमेंट है. आपका जो प्रोसेस है, क्योंकि हम सब पहले नए नए कर रहे हैं ना, तो जब कोई ट्रैफिक नहीं हो रोड पे तब ड्राइविंग करना, द जर्नी इज वेरी स्मूथ. जैसे जैसे 5 बजे का, 6 बजे का, 7 बजे का, एवरीवन इज वेकिंग अप, द एनर्जी इन द एटमोस्फियर बढ़ती जा रही है. अब उतने ट्रैफिक के बीच में आपको अपना चैनल क्रिएट करना पड़ता है, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है.
2: पर जल्दी सोना पड़ेगा, ये बात ठीक है, जल्दी उठना है तो जल्दी सोना पड़ेगा, परंतु वो कर लो तो फिर मॉर्निंग में आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी. मैं स्टूडेंट को भी एडवाइस देता हूँ.
1: आपने, हाँ, ये मैं स्टूडेंट पे आने वाली थी कि स्टूडेंट्स जो है एग्जाम्स के दौरान, और जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि एक बार अगर वो रिदम टूटा, एक बार जब वो जो पूरा टाइम सेट किया हुआ था वो टूटता है, तो उसको वापस लाने में बहुत टाइम लगता है. तो अगर एग्जाम्स के दौरान वो लेट नाइट पढ़ रहे हैं, फिर वो चाहते हैं कि नहीं नॉर्मल जैसे हम पहले जी रहे थे वैसे करें, तो वो वापस ला पाना मुश्किल होता है, तब क्या करें?
2: लेकिन एक बार बस वो साइकिल को ठीक करना है. अगर अपने साइकिल को ठीक किया, अगर 4 बजे उठ गए, पढ़ाई की अच्छे से, अपना दिन का रूटीन किया, दिन में भले माइक्रो स्लीप ले ली, और अगर 4 बजे से आप जागे हो तो देखना 9:30-10 बजे तो गहरी नींद आने लगेगी और साइकिल आपका ठीक हो गया. भले 1-2 दिन लगेंगे, परंतु मॉर्निंग में स्टूडेंट्स को भी मैं एडवाइस देता हूँ कि भले दिक्कत भी लगे, कहीं ये कहते कि हम सवेरे उठ नहीं पाते, रात को कहो 3 बजे तक जाग लेंगे, भले 10 बजे भी सो गए, हम 4 बजे नहीं उठ सकते. तो अगर एक बार 4 बजे उठ जाए, खड़े हो जाए, भले वॉकिंग करे, चाय पीने की आदत है चाय पी लो, या तो स्नान कर लो, सबसे अच्छा है कि भी मेरा डे स्टार्ट हो गया, फिर थोड़ी देर मेडिटेशन करके आप पढ़ना शुरू करो, तो वो 2 घंटे की पढ़ाई आपके 6 घंटे की पढ़ाई के बराबर हो सकती है.
1: लेकिन उस दौरान कई बार नींद आ रही होती है,
2: स्नान कर लिया फिर नींद नहीं आएगी. ऐसे ही आप उठे, मुंह धुलाई किया, बैठ गए तो शायद नींद आ सकती है.
0: एफर्ट कम, रिजल्ट ज्यादा.
1: जो जिसको हम कर रहे थे,
2: ऐसा स्नान नहीं करना है, ब्रश कर लो अच्छे से, हाथ पे ठीक से धुलाई कर लो, फिर फ्रेश होकर के बैठो, तो नींद नहीं आएगी.
1: शिवानी डॉक्टर पटेल, कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, उसमें नींद को हमने सबसे, जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि हम अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन आज जो हमने समझा है, जो ज्ञान की प्राप्ति है, कि इट्स सो इम्पोर्टेंट, ना सिर्फ रिजुविनेशन के लिए बॉडी और माइंड के, बल्कि मेरे पूरे जीवन के लिए, तो वो सही टाइम पे और ये सारे एस्पेक्ट्स के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो ना सिर्फ नींद ठीक से आएगी, बल्कि उसके साथ की जुड़ी जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे हम बच सकते हैं. थैंक यू सो मच. तो ये सारी बातें समझ में आई हैं, अब प्रयास करेंगे, अनुभव हमारा होगा. आज अवेकनिंग में इतना ही, फिर मुलाकात होगी. ओम शांति.